0: तकरीबन 4000 के करीब। ते पुलिस ने जिहड़ी नंबर दिता उन्हें दिता जी 1419। मतलब कि तुसीं इह देख लो हिंदुस्तान की एक डेमोक्रेसी की कैपिटल होवे उहदे विच बंदे किन्ने मारे गए आ उहियो नहीं सी पता, उहियो ना पता। वह जाके इन्हां दी ऑफिशियल फिगर आके जाके आई आ 2.5 साल बाद। अच्छा हुण उदो मैं उन्हां नूं कहा मैं कि जां तां इह इन्हां ने इत्थे खत्म कर देना और इतिहास में जाके हमेशा ही जाएगा कि जी तां जी सिखां ने लड्डू वंडे जी, उन्होंने इंदिरा गांधी नूं मारता जी, उन्होंने जो लड्डू वंडे भंगड़े पाए डांस किए लोगों को गुस्सा आया तो लोगों ने थोड़े मोटे मारते। जां मैं कहा दूजे पासे पूरे पूरा रिकॉर्ड करो जिहड़ा इतिहास कहे कि उदों दी जिहड़ी ओह पीढ़ी सी ओह लड़ी, उन्होंने जुल्म किया पर जुल्म सहया नहीं, वह वापस लड़े आ चाहे नतीजा जो मर्जी होवे। हर लड़ाई जितने वास्ते लड़ी जाती, कई लड़ाइयां लड़ियां जांदियां क्योंकि तुहाडा फर्ज है लड़ाई लड़ना। तो इस करके जदों ये गल कही तो उस तो बाद वो कहिंदे बिल्कुल तुसीं सही हो, जगह जगह ते जा जाके उन्होंने फिर अपने लैक्चरां स्पीचां च कहा कि रिकॉर्ड बन रहा, इतिहास बन रहा, अपने एफिडेविट दिओ जाके दसो की करना। हुण तुसीं अज कल देखो उदू बाद कांग्रेस ने इन्हां नूं रिवार्ड किया, इन्हां नूं मंत्री बनाया, इन्हां नूं एम पी बनाया। अज कल जेकर दोनों का पोलीटिकल कैरियर खत्म है, वह एम पी भी नहीं हैं, वह मंत्री नहीं हैं। वो मंत्री जेकर नहीं रहे तो एक पैरवाई दे करके अज जेकर 30 साल तो बाद इस इशू की गल कर रहे हैं क्योंकि इन्हू जिंदा रखा गया, यदि पैरवाई की गई है। इस करके जेकर असी यही सोच के खत्म किया हों तो अज किसी ने भुलिया होना से यार कुछ होया असी कुछ थोड़े जे सिख मार दिते सी, पता नहीं दंगे सीगे वो तो असी कोई पिछे कोई रिवेंज लैन लई नहीं कर रहे, असी तो अपना फ्यूचर सिक्योर करन लई कर रहे हैं ताकि कल नू कदे इहो जिहा मौका जो एक बार आ गया तो दूजी वारी भी आ सकता। यह गल भुल जाओ कि कोई सी इतिहास दे विच दूजी वारी इहो जिहा नहीं आ सकता, कदे भी आ सकता। जो
1: सो दोस्तों इस दे नाल ही वेला हो रहा जी तुहाडे तों इजाजत लैण दा, उम्मीद करदे हां कि तुहानू साडा अज दा प्रोग्राम पसंद आया होवेगा और इसे दे नाल ही मैनूं अपने मेजबान पत्रस मसीह नूं दिओ इजाजत, मिलांगे पलके एक होर नवें रिकॉर्ड प्रोग्राम दे नाल। तद तक दे लई रब राखा, शबा खैर।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर. पहली जून 2026 का दिन SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. और आज दिन है सोमवार. सबसे पहले आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आज कार्यक्रम में आपके लिए है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर एक रिपोर्ट. कुछ नई बात, बात करेंगे प्रथम राष्ट्र के झंडे के बारे में और मुलाकात करेंगे एक फिल्म निर्देशक से ही. और क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा साज है? जी, आपने दो साज सुने इसमें. एक को तो आपने आसानी से पहचान ही लिया होगा, लेकिन आप मुझे पहचान कर अपना जवाब अवश्य भेजें 4397997677 पर. और हम भारत से समाचार तो कार्यक्रम का हिस्सा होंगे ही, लेकिन अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, सोमवार पहली जून के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. कोलिशन ने माना है कि उसे अपनी अपील बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू का एक पोल है जिसमें दिखाया गया है कि वन नेशन का प्राइमरी वोट उसे देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी बनाता है. पोल में कोलिशन का प्राइमरी वोट 20 प्रतिशत

प्रतिशत, लेबर का 28 और वन नेशन के लिए सपोर्ट 4 पॉइंट बढ़कर 31% हो गया। कोलिशन के सांसद डैन तिहान का कहना है कि ये पोल सरकार के प्रति आम नाराजगी दिखाता है। उधर वन नेशन के नेता पॉलिन हैंसन का कहना है कि उनमें देश का नेतृत्व करने की काबिलियत है, जबकि लेबर ऑस्ट्रेलियाई लोगों से सेनेटर हैंसन की पॉलिसी पर ध्यान से सोचने की अपील कर रही है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण हिस्से में आए तीस तूफान के बाद हजारों घरों में बिजली नहीं है। खराब मौसम में फंसी फिलिपिनो मे टेम्पलमैन ने एसपीएस फिलिपिनो को बताया कि तूफान इतनी तेज था कि उनके घर के सामने एक बड़ा पेड़ टूटकर उनकी गाड़ी के एक हिस्से पर गिर गया। ब्रिस्बेन में विक्टोरिया पार्क से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। 3.8 बिलियन डॉलर की लागत 63,000 सीटों वाले स्टेडियम का काम शुरू हो गया है। ये 2032 ओलंपिक गेम्स का सेंटर पीस होगा। प्रीमियर डेविड क्रिसफुली ने कहा कि क्वींसलैंड के लोग सालों से देरी के बाद सरकार से इस पर काम शुरू करने का अनुरोध कर रहे थे और उन्होंने वादा किया कि पार्क का 2/3 से अधिक हिस्सा पब्लिक ग्रीन स्पेस बना रहेगा, लेकिन ट्रेडिशनल ओनर्स और एक्टिविस्ट ने चेतावनी दी है कि इस प्रोजेक्ट से सांस्कृतिक और इकोलॉजी

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: तीसरे CDS के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. वो सेना के सहसेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं. और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है. अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sps.com.au/hindi से जुड़े रहें. न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ. और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब बात प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की. ऑस्ट्रेलिया के इस साल के फेडरल बजट में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स के नियम सख्त किए गए हैं. और इस बदलाव के तुरंत बाद न्यूजीलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर निकोला विल्स ने ऑस्ट्रेलियाई इन्वेस्टर्स को खुले तौर पर वहां निवेश करने का निमंत्रण दे डाला है. तो क्या सच में न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टी खरीदना ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कभी न्यूजीलैंड से होकर ऑस्ट्रेलिया आए थे? तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में स्वाति शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट में.
4: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा. भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले पढ़ाई या काम के लिए न्यूजीलैंड में रहे और फिर वहाँ से बेहतर मौकों की तलाश में ऑस्ट्रेलिया आए. इनमें से बहुत से लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है और इस सफ़र की एक बड़ी वजह रही है ऑस्ट्रेलिया की मजबूत इकॉनमी और प्रॉपर्टी में जल्दी पैर जमाने का मौका. मेलबर्न और सिडनी जैसे बड़े शहरों में विभिन्न इलाकों में भारतीय कम्युनिटी ने प्रॉपर्टी में खूब पैसा लगाया है, लेकिन इस साल फेडरल बजट में जिम चार्मर्स ने पूरा गणित बदल दिया है. 1 जुलाई 2027 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर मिलने वाली 50% कैपिटल गेन्स टैक्स छूट को इंडेक्सेशन मॉडल से बदला जाएगा, यानी इन्वेस्टर्स को अब वो टैक्स राहत नहीं मिलेगी जो पिछले दो दशकों से मिलती आ रही थी. और ये बदलाव अब सिर्फ बजट की घोषणा भर नहीं रहे हैं, इनसे जुड़ा ट्रेजरी लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में पेश हो चुका है, जिसमें CGT बदलाव पहले चरण में शामिल हैं. इस ऐलान के बाद टास्मन सी के पार से न्यूजीलैंड की फाइनेंस मिनिस्टर निकोला विलिस ने ऑस्ट्रेलिया का ही पुराना टूरिज्म स्लोगन उल्टा घुमाकर ऑस्ट्रेलिया वासियों को सीधे निमंत्रण भेज दिया.
5: Where the bloody hell are you? If you're an Aussie, come over. Australians looking to start or grow a business have an epic opportunity, and that opportunity is to do it in New Zealand. No capital gains tax, very simple tax system. Broad base, low rate, we keep it simple, we allow you accelerated depreciation and deductibility on your capital investments.
4: New Zealand ka system is mamle mein Australia se kafi alag hai. Wahan broad capital gains tax hai hi nahi. Uski jagah ek niyam hai jise bright line test kehte hain. Mukesh Arora New Zealand mein tax accountant hain aur accounting, finance aur taxation mamlon ke visheshagya hain. वे इस बारे में समझाते हैं.
6: राइट लाइन टैक्स जो है ना, न्यूजीलैंड में स्पेसिफिक टैक्स है, उसको अवॉइड मतलब उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि लोग बहुत ज्यादा फ्लिप ऑफ करने लगे थे सेल्स को, ना आज खरीदा कल बेचा, कल बेचा परसों बेचा, कल खरीदा, ऐसे करके ना बहुत फ्रिक्वेंटली सेल्स होने लग गई थी. जनरली न्यूजीलैंड में क्या है, सेल एंड परचेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं है ऑफ प्रॉपर्टी, उस कंडीशन अप्लाई होती है. वो इंटेंशन टेस्ट होता है, एक सबसे वो थोड़ा डीप में चले जाएंगे. इंटेंशन टेस्ट होता है जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आपकी इंटेंशन क्या थी, क्या उसको डेवलपमेंट करने की इंटेंशन थी, या उसको रेंटल इन्वेस्टमेंट की तरह आपने यूज करना था, या कोई और पर्पस था आपका. तो पर्पस आपका डिसाइड करता है कि आपकी सेल एंड परचेज पे जो प्रॉफिट आपने बनाया है वो टैक्सेबल है या नहीं है. आज की डेट में जो लास्ट अपडेट है ब्राइट लाइन टेस्ट का, वो ये है कि 1 जुलाई 2024 के बाद किसी ने भी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है और 2 साल के अंदर बेच दी है, तो सेल परचेज, सेल प्राइस और परचेज प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा.

0: टैक्स एक्सपर्ट माइक रेडी कहते हैं कि यही सरलता न्यूजीलैंड को इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाती है।
1: They're more favorable, they give certainty and they reduce compliance costs.
0: लेकिन असली पेच यहीं से शुरू होता है। ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस यानी ATO के नियमों के मुताबिक अगर आप ऑस्ट्रेलिया के टैक्स रेजिडेंट हैं तो आपकी दुनिया भर की कमाई पर टैक्स ऑस्ट्रेलिया में ही देना होगा, चाहे प्रॉपर्टी न्यूजीलैंड में हो, इंडिया में हो या कहीं और।
2: ओवरसीज में कहीं पे भी वो खरीदेंगे और उसको बेचेंगे या उसमें कैपिटल गेन आएगा तो वो तो ऑस्ट्रेलिया में टैक्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के टैक्स रेजिडेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स जो है वो वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर है। हम न्यूजीलैंड वाले पॉइंट से बता सकते हैं कि अगर एक ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे आके टैक्स रेजिडेंट बन जाता है, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप 183 डेज कंटिन्यूस यहाँ पे रह लेते हो तो आप यहाँ के टैक्स रेजिडेंट बन जाते हो, तो यहाँ पे फिर न्यूजीलैंड के टैक्स रूल्स अप्लाई होंगे।
0: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच डबल टैक्स अग्रीमेंट जरूर है, मतलब एक ही कमाई पर दो बार टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप न्यूजीलैंड के नरम नियमों का फायदा अपने ऑस्ट्रेलियन टैक्स रिटर्न में उठा सकेंगे।
2: एक एग्जांपल सपोज हम अगर आप न्यूजीलैंड में रहते थे या आप अभी ऑस्ट्रेलिया के हो, एक ट्रांजिशन रूल्स होते हैं। ट्रांजिशन रूल्स का मतलब होता है अगर आप 10 साल से ज्यादा न्यूजीलैंड से बाहर गए हैं तो आप टोटली यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो। अब आप डिसाइड करते हो कि आप मूव कर रहे हो वहां से, तो डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे। अगर आप मूव नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही रह के आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। तो जो आपने न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी है या सेम प्रॉपर्टी आपने ऑस्ट्रेलिया में करी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर कैपिटल गेन आपका ऑस्ट्रेलियन टैक्स सिस्टम लगा रहा है तो वो न्यूजीलैंड वाले प्रॉपर्टी पे भी लगेगा आपको।
0: प्रॉपर्टी इकोनॉमिस्ट कैमरन कुशर कहते हैं कि सिर्फ टैक्स देखकर सरहद पार इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं है।
3: There's a reason why people tend to invest in Australia rather than New Zealand. And I guess there's also a reason why we see so many more New Zealanders coming to Australia than we see people moving the other way. Obviously, Australia is a stronger economy. I think, you find that a lot of New Zealanders move to Australia because there's more opportunity here in Australia.
0: अब आंकड़ों की भाषा में देखें तो न्यूजीलैंड के घरों के दाम पेंडेमिक की चरम सीमा से अब भी 15% से ज्यादा नीचे हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी है और इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया जितनी विविध यानी डाइवर्सिफाइड नहीं है। ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या वापस उसी देश में पैसा लाया जाए जिसे वो आर्थिक वजहों से पीछे छोड़ आए थे। रेड्डी चेतावनी देते हैं कि उनके पास ऐसे कई ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स आ चुके हैं जो इस गलत फहमी के कारण पेनल्टीज भुगत रहे हैं।
1: It is something that we are seeing a lot of. And unfortunately, spending our time trying to reduce tax penalties where people have either paid their taxes in the wrong country or not made the disclosures in both countries about their activities.
0: CPA Australia की tax lead Jenny Wong कहती हैं कि capital gains से जुड़े कई तकनीकी पहलुओं पर अभी consultation जारी है, फिर भी legislation संसद में पेश कर दिया गया है। उनके मुताबिक आधी अधूरी टैक्स व्यवस्था के भरोसे इन्वेस्टर्स अपने बड़े वित्तीय फैसले नहीं ले सकते। इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले एक योग्य क्रॉस बॉर्डर टैक्स अकाउंटेंट से सलाह लेना जरूरी है। SBS हिंदी पर जोसी हार्वी के साथ इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा। धन्यवाद। इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य है, अपने लिए स्पष्ट जानकारी के लिए किसी फाइनेंस विशेषज्ञ से संपर्क करें।
4: तो आप सुन रहे थे ये रिपोर्ट कि क्या न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा रहेगा या कैसे है। और अभी कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको एक धुन सुनवाई थी और मैं जानना चाहती थी कि ये कौन सा साज बज रहा है। एक बार आपको फिर से सुनवा देती हूँ, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए और मुझे अपने संदेश भेज दीजिए 0439-799-767 पर। तबले को तो आपने पहचान लिया होगा, उसके साथ में दूसरा कौन सा साज बज रहा है, बस आपने मुझे वही बताना है। और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
5: SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए, सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
6: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
5: SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
4: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे मुलाकात करेंगे एक फिल्म निर्देशक के साथ। भारत से समाचार भी आप सुनेंगे, लेकिन पहले सुनिए ये अंश जिसमें बात है प्रथम राष्ट्र के झंडे के बारे में।
7: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
4: क्या आपने ऑस्ट्रेलियन झंडे के साथ लाल, काला और पीला झंडा लहराते हुए देखा है? ये आदिवासी झंडा है। ये ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों और जमीन, समुदाय और कहानियों से उनके जुड़ाव को दिखाता है। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक झंडे से कहीं अधिक है। ये उनकी ताकत, जिंदा रहने और पहचान का प्रतीक और याद दिलाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में आइए जानते हैं इसका इतिहास और प्रतीकात्मक अर्थ। और SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय झंडा है, लेकिन इसकी पहचान तीन झंडों से है, जिसमें एबोरिजिनल झंडा और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर झंडा भी शामिल है। वैसे हमेशा से कोई एबोरिजिनल झंडा नहीं था। ये झंडा 1971 में लुरिट्जा और मुंबई कलाकार और एक्टिविस्ट अंकल हैरल्ड थॉमस ने डिज़ाइन किया था, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया स्कूल ऑफ आर्ट्स के पहले एबोरिजिनल ग्रेजुएट थे। इसे पहली बार 12 जुलाई 1971 को एडिलेड में जमीन के अधिकारों के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान फहराया गया, जिसे उस समय नेशनल एबोरिजिनल डे कहा जाता था। वैसे ये शब्द अब पुराना हो गया है। फिर उसके एक साल बाद ये झंडा कैनबरा में एबोरिजिनल टेंट एम्बेसी में जमीन के अधिकारों और खुद को तय करने के अधिकार को दिखाने वाला एक ताकतवर चिन्ह बन गया। 1995 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इसे औपचारिक यानी ऑफिशियल ऑस्ट्रेलिया का झंडा माना। इसका सादा डिजाइन प्रतीकात्मक है। काला रंग एबोरिजिनल लोगों के लिए, लाल रंग देश और जमीन से जुड़ाव के लिए, और बीच का पीला गोला जीवन के सूरज के लिए। गोमेराई महिला और उभरती हुई आर्टिस्ट जेड ब्रैनन बताती हैं कि उन्हें झंडे में क्या दिखता है।
8: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's Aboriginal people.
4: समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं, ये हमें समझाती हैं वोना रुआ महिला आंटी सुजान कैंडल। वो 1960

0: 1970 के दशक में न्यू साउथ वेल्स के कोंडापोलिन शहर में पली बढ़ी। उन्हें वो समय याद है जब झंडा अधिकतर नहीं देखा जाता था। आदिवासी झंडे की उनकी पहली याद स्कूल या कोई काउंसिल ऑफिस की नहीं है, बल्कि टेलीविजन पर है।
1: I actually saw the flag on television in a protest.
2: All the TV, the media back in the

0: Hits from Home.
1: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
2: आप किसी प्रोटेस्ट में या टीवी पर देख सकते हैं। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में रोजमर्रा की जिंदगी का कोई रेगुलर हिस्सा नहीं है। जेट जैसे युवा आदिवासी लोगों के लिए ये अनुभव बहुत अलग है। वे अपने चारों ओर आदिवासी झंडे को देखते हुए ही बड़े हो रहे हैं। जेट ने अपना बचपन सिडनी के ईस्ट में माट्राविल में बिताया। उन्हें एक दीवार पर बनी पेंटिंग बहुत स्पष्ट रूप से याद है।
3: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Korean flag mural, and it was so big, it was overwhelming for my little body.
2: जैसे जैसे जेड बड़ी होती गई, उन्हें झंडा रोजमर्रा के कामों में दिखने लगा।
4: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
2: उनके लिए झंडा उसे दूसरी भीड़ और साथियों को पहचानने में मदद करता है। ये उन्हें बताता है कि भीड़ में भी उनके साथ कौन है। जब 1995 में आदिवासी झंडा ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल झंडा बना, तो आंटी सुजान ने पहले छोटे छोटे बदलाव देखे।
5: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police didn't have it. You saw it once and you just thought, that's great.
2: समय के साथ झंडा देखना दुर्लभ यानी रेयर से सामान्य बात हो गई।
5: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it. It doesn't matter. It's there now. It's legal. It is the Aboriginal flag. It represents our people.
2: किसी बिल्डिंग के प्रवेश पर झंडा देखकर जेट के लिए उस जगह का एहसास बदल जाता है।
3: When I go into a space, I want to feel accepted, and knowing that the flag is out there, usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming.
2: दोनों ही महिलाओं के लिए पब्लिक जगहों पर, स्कूल के बाहर, पुलों पर, रैलियों में, कपड़ों और टैटूज पर झंडा गर्व और जुड़ाव का एक मजबूत चिन्ह बन गया है। इस कहानी का एक और हिस्सा है। कई सालों तक इस बात पर कानूनी और सांस्कृतिक बहस चलती रही कि आदिवासी झंडे का इस्तेमाल कौन कर सकता है। डिजाइनर के तौर पर अंकल हेरल्ड थॉमस के पास इस झंडे का कॉपीराइट था। उन्होंने इसके इस्तेमाल का लाइसेंस दिया, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी भी शामिल थी जो कपड़ों और मर्चेंडाइज पर झंडे को कंट्रोल करती है। इसका अर्थ था कि कुछ आदिवासी संगठनों और समुदायों को कानूनी पत्र मिले कि ये बिना इजाजत या फीस दिए शर्ट या प्रोडक्ट्स पर झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके जवाब में आदिवासी लोगों के फैशन लेबल क्लोदिंग द गैप्स और उसके साथियों ने फ्री द फ्लैग कैंपेन शुरू किया। उन्होंने सरकार से कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला ताकि झंडे को दूसरे नेशनल झंडों की तरह माना जाए, ना कि किसी प्राइवेट लोगो की तरह। सालों के पब्लिक दबाव और कैंपेनिंग के बाद कॉमनवेल्थ सरकार ने 2022 में घोषणा की कि उसने अंकल हेरल्ड थॉमस से आदिवासी झंडे का कॉपीराइट हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन झंडे की तरह अब आदिवासी झंडा भी सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए मुफ्त है, यानी लोग बिना लाइसेंस फीस या कानूनी कार्रवाई के डर के बिना झंडे को कपड़ों, आर्ट और सामान पर लगा सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि झंडा आखिरकार उन लोगों को वापस मिल गया है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। पीछे मुड़ के देखने पर आंटी सुजान कहती हैं कि झंडे ने लोगों के एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया के बारे में नजरिया बदलने में मदद की है, लेकिन उनका मानना है कि अभी भी बहुत काम बाकी है।
5: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy

0: and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
1: अब जब आप आदिवासी झंडा देखते हैं तो आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसका इतिहास क्या है। इसे समझना ऑस्ट्रेलिया को और गहराई से समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं। तो एक ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में आपने जाना एबोरिजिनल फ्लैग के बारे में। इस बीच में हमारे श्रोता कुमार जी का संदेश है, साज को पहचानते हुए तो आप भी उसको पहचानिए। ये कौन सा साज है इसके बारे में तो बाद में बताऊंगी ही, चलिए एक बार और इसको सुन लेते हैं। इस साज को पहचान कर अपने उत्तर अवश्य लिख भेजें और मैं मिलती हूँ आपसे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: SBS Chill पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS Chill सुनने के लिए SBS Audio ऐप पर जाएं।
3: SBS साउथ

0: SBS South Asian, your news from here and hits from home.
1: SBS World News, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS World News हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS Learn में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
3: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना सुनते चलें एक गाना। आप मुझे बताइएगा कि ये किस फिल्म का गाना है और ये कलाकार कौन से हैं, तो मुझे अपने जवाब लिख भेजिएगा 04397997677 पर। कौन सी फिल्म का गाना है, कलाकार कौन है?

0: तो श्रोताओं, आपने पहचाना कि ये कौन सी फिल्म का गाना था और किस कलाकार पर ये गाना फिल्माया जा रहा था? सोचिए और मुझे लिख भेजिए 04397797767 पर। और अब जानते हैं भारत के समाचार हमारे संवाददाता मनन कुमार के साथ।
1: स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश है भारत के समाचार। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विश्वास जताया है कि दोनों देशों के बीच होने जा रहा व्यापक व्यापार समझौता अगले कुछ हफ्तों या महीनों में संपन्न हो जाएगा। IIT दिल्ली में आयोजित US इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते में अब केवल 1% हिस्से पर ही सहमति होनी बाकी रह गई है।
2: Just last week, India had sent a team to Washington, D.C. to finalize the last 1% of that trade deal. Next week, we will welcome a U.S. delegation here to continue those talks. We fully expect that the trade deal will be signed over the next few weeks and months.
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी आज से आ रहे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल का हवाला देते हुए इसी आशय का वक्तव्य दिया।
3: We had a trade team which visited the United States in the month of April, if I'm not mistaken. And now we are expecting a team from the United States to visit India next week, where negotiations will be taken forward. So far, we've had a positive and constructive engagement. We'll keep you updated with more details in this regard.
1: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण सोनारपुर में हुए हमले की सभी विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने भर्त्सना की है। वे यहां चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता संजू कर्माकर के परिवार से मिलने पहुंचे थे। वीडियो पर कैद हुई मारपीट के दौरान श्री बनर्जी पर अंडों, जूतों और पत्थरों से हमला किया गया। एक बड़ा पत्थर उनके हेलमेट पर भी लगा। श्री बनर्जी ने इस हमले को उनकी हत्या की कोशिश बताया। उनकी बुआ ममता बनर्जी ने कहा, शासक हत्यारे बन गए हैं, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। हमले के बावजूद श्री बनर्जी ने हिंसा में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, एक बड़े विपक्षी नेता को पूरी पुलिस सुरक्षा न देना भाजपा की बदले की राजनीति को दिखाता है। पश्चिम बंगाल और

0: केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे हमले रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक मतभेद हिंसा का कारण नहीं बन सकते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। इस बीच श्री बनर्जी को पश्चिम बंगाल CID ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में समन भेजा है। उन्हें आज CID मुख्यालय भवानी भवन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का नाम बतौर अगला मुख्यमंत्री प्रस्तावित किए जाने के बावजूद कांग्रेस आला कमान की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कर्नाटक में दो जाति समूह अपनी अपनी जातियों में से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने की जोरदार मांग कर रहे हैं। मंत्रिमंडल पदों के लिए भी पैरवी की जा रही है। शनिवार को प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के कई संतों ने कांग्रेस से आग्रह किया कि नए मंत्रिमंडल में वन मंत्री ईश्वर खंडरे को उप मुख्यमंत्री बनाए। बीदर जिले के रहने वाले श्री खंडरे लिंगायत समुदाय की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय वीर शैव महासभा के अध्यक्ष भी हैं। उनके बेटे सागर खंडरे बीदर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। दलित नेता और गृह मंत्री जी परमेश्वर के समर्थकों ने प्रदर्शन करते हुए पार्टी से मांग की कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनका तर्क है कि वे दो बार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, इसलिए नए मंत्रिमंडल में उन्हें कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बनाया ही जाना चाहिए। इस बीच रविवार को विधान सौधा में हुई कांग्रेस विधायी दल की बैठक में श्री शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य नेताओं के साथ मिलकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर कर्नाटक में सरकार बनाने का औपचारिक दावा प्रस्तुत किया। भाजपा द्वारा कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता के लिए आपसी लड़ाई का जवाब देते हुए कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकमत है।
1: कांग्रेस परिवार इकट्ठा है। सर्वसम्मति से कांग्रेस परिवार ने DK शिव कुमार जी को चुना है और सिद्धारमैया जी ने यह प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस एक है, कर्नाटक एक है, कर्नाटक का विकास ही हमारा लक्ष्य है।
0: सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को संवैधानिक ठहराने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को कहा कि सही वोटर लिस्ट से ही सही चुनाव होते हैं। वे दिल्ली में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी सलाहकारों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। चुनाव आयोग के अनुसार इस सम्मेलन में चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा वोटर लिस्ट के प्रबंधन, SIR और मतदान व मतगणना की प्रक्रियाओं पर बात की गई। इसमें भारत की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, सटीकता और अखंडता को बनाए रखने वाले सुरक्षा उपायों और पारदर्शिता को प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि कई विपक्षी दलों और कानून के विशेषज्ञों ने SIR को संवैधानिक ठहराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की है। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव, जो SIR के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता भी थे, का कहना है कि न्यायालय के इस फैसले ने प्रजातंत्र की व्याख्या ही बदल दी है।
2: 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना, मगर असली खबर यह है कि अब BJP इस देश में देख रही कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर यह है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर यह है कि आज ADR वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में ADM जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए।
0: कई बाधाओं को पार कर एशियाई खेल 2026 के ट्रायल्स में पहुंची अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवान विनेश फोगाट सेमीफाइनल्स में मीनाक्षी गोयत से 6-4 पॉइंट से हारकर भारतीय कुश्ती टीम में अपनी जगह बनाने से चूक गई। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए विनेश फोगाट को ट्रायल्स में भाग लेने की इजाजत दी थी। महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश ने अपने शुरुआती मुकाबले में ज्योति को 7-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल्स में कड़ी चुनौती मिलने के बावजूद उन्होंने निशु को 7-6 से मात दी, लेकिन शनिवार को हुए बेहद विवादित और नजदीकी मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले के बाद विनेश फोगाट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एक पहलवान से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ा और वे अगली बार और दमखम से वापसी करेंगी।
3: हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि मेरे को एक चांस मिलना चाहिए। उसके बाद में ये लोग सुबह से शाम तक ये चीजें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा कि कब क्या निकाल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं। सुबह वेट के टाइम मेरे को एक लेटर पकड़ा दिया कि आप तो 50 में खेल सकते हो। 1 घंटे तक मैंने बहस की, जिस जो टाइम मेरे को अपनी रिकवरी में लगाना चाहिए था वो टाइम मैं इसमें लगा रही हूँ। उसके बाद में जो इंटरनेशनल ड्रॉ होता है, जो सिस्टम होता है, वो पॉइंट्स निकलते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से जितनी स्ट्रॉन्ग लड़कियां थी मेरे वेट में सब मेरे साथ में लड़ाने के लिए कोशिश की है, तो वो फेयर प्ले जो फील्ड में होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ में। लेकिन मैं फिर भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर दी और मेहनत करूंगी और मैं फिर से मैट के ऊपर अच्छे तरीके से वापस करूंगी।
0: तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
4: भारत के इन समाचारों के बाद में आपसे मिलती हूँ इस अंतराल के बाद।
5: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। NITV पर जाने उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं, देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती है ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से, देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
6: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
7: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
5: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
7: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
4: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आपसे जानना चाहती थी कि वो गाना जो आपने पहले सुना था वो कौन सी फिल्म का था, किस कलाकार पर फिल्माया गया था। तो हमारे श्रोता कुमार जी ने तो जवाब बिल्कुल सही लिख भेजा है। एक और श्रोता ने भी जवाब तो बिल्कुल सही लिखा है लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो चाहूँगी कि वो भी अपना नाम भी लिख दें। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपना नाम फिर नहीं लिखा लेकिन वो चाहते हैं कि जो वो साज की बात हो रही है उसको एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं और कार्यक्रम को उसके बाद आगे बढ़ाते हुए चलेंगे एक मुलाकात की तरफ। तो पहले सुनिए ये कौन सा साज है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार।

0: आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अनूप लुकर से, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई है जो उनके जीवन पर आधारित है। नाम है डोंट टेल मदर। इस फिल्म का प्रीमियर हुआ बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और अब ये फिल्म आई है सिडनी फिल्म फेस्टिवल में। तो यही सवाल था मन में कि वो ये फिल्म क्यों बनाना चाहते थे। तो उनका कहना है,
1: अराउंड 2019 में मेरे अब पत्नी के साथ एक कॉन्वर्सेशन में था जहां हम बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे यू नो रेस कर सकते हैं। मैं बोल रहा था कि हाँ, डिसिप्लिन करने के लिए यू नो समटाइम्स मारना पड़ता है, वो ठीक होता है एंड स्टफ, और वो अमेरिकन है, सो यू नो शी वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इट। एंड वो कॉन्वर्सेशन जब मैं सोच रहा था, स्लोली रियलाइज आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये एक साइकिल है वायलेंस का। यू नो मेरा ग्रैंडफादर प्रोबेबली यू नो हिट माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हिट मी, अब मैं वही बात कर रहा हूँ, तो हाउ डज दिस एंड। और जब मैं सोच रहा था कि यू नो कैसा था उन समय में एंड मेरा अपब्रिंगिंग कैसा था, स्कूल में कैसा था, अब कैसा चेंज हो रहा है, एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग अ स्टोरी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो कैसे यू नो बच्चों को अफेक्ट कैसे होता है, क्योंकि बच्चे स्पंज जैसे

0: तो मेरा मेथड था कि बिफोर द सीन उसको जाके बोलूँगा कि ये हो रहा है, तुम जैसे करोगे रियल लाइफ में वैसे जाके करना और वैसे जाके बोलना. और बोलता था कि मैं ऐसे कहता था, लाइक मैं ऐसे बोलता था, आप जैसे बोलना चाहते हो आप वैसे ही बोल दो. तो दैट वाज द होल मेथड ऑफ. सो पूरी
1: छोटे वाले
0: पिक्चर
1: के
0: बहुत
1: साथ,
0: बहुत बड़े
1: हाँ
0: बच्चे और छोटे बच्चे गए. सो बोथ को स्टोरी पूरा से नहीं पता था. दे वुड कम, दे वुड डू इट, एंड आई थिंक सो ही वाज फाइन विद दैट. लेकिन द डिफिकल्ट पार्ट था कि वो एक्टिंग करने का, बिकॉज ही न्यू इट ऑलरेडी, थोड़ा इट वाज इट टुक अ वाइल टू गेट लाइक हाउ आई वांटेड इट इन माय हेड.
1: तो क्या आपको किसी समय पे ऐसे लगा कि आपके ऊपर वो सब बहुत हावी हो रहा है, या पर्सनली आपके ऊपर उन सब चीजों का कितना असर है आज की तारीख में, कैसा है?
0: तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब इट फेल्ट लाइक आई वाज ट्रैवलिंग इन टाइम इन माय माइंड. यू नो
1: जी
0: एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर, सब कुल बहुत क्लियर था. जैसे कि मेरे मम्मी कैसे बात करती थी, मेरा
1: हाँ
0: डैडी कैसे बात करते थे, मैं बट लाइक हाउ आई यूज टू टॉक, मेरा भाई कैसे बात करता था. द होल जर्नी और द फिल्म, you know, or like even my memory was bittersweet because there was bitterness and sweetness, and I
1: जी
0: wanted to bring that into the film. Like, you know, जब भी कोई देखे तो उनको भी ऐसा फील करे कि हाँ समय, वो समय अच्छा था, it was very sweet, but also there was that little bit of bitterness in us. स्क्रिप्ट लिखने के समय मुझे पता चला कि मेरे माँ को कितना स्ट्रगल्स थी. यू नो लाइक आई टेल पीपल दैट इट वॉज लाइक अ थेरेपी सेशन फॉर मी राइटिंग स्क्रिप्ट, दैट आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड माई मदर सो मच मोर दैन वेन आई वॉज अ चाइल्ड. जब तब हम बच्चे होते हैं, हमें
1: जी
0: नहीं पता चलता है कि यू नो हमारे पेरेंट्स पर क्या बीत रहे होंगी, लाइक उनके मन में क्या जा रहा हो, लाइक यू नो वॉट्स हैपनिंग इन देयर माइंड्स. लेकिन जब मैं लिख रहा था तब मुझे समझ में आया कि हाँ लाइक मेरे माँ को क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या सैक्रिफाइसेस करना पड़ा, और उसके उनके असर असर हाँ कैसी होती है उन पर. सो दोज थिंग्स यू नो इज व्हाट आई अंडरस्टूड नाउ. एंड एज किड्स वी डोंट लुक एट देम और वी डोंट रियलाइज, एंड इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन वी लुक बैक वी गो ओ ओके यू नो
1: हाँ
0: नाइस.
1: जी, तो वो जो नया आपको एक अनुभव हुआ, जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो भी एंडिंग हुई फिल्म की और जो भी वो डिसीजन था, उसका क्या आपके ऊपर असर पड़ा?
0: I'm definitely very appreciative of what happened, you know. और इसलिए the ending of the film as well reflects that in a way.
1: जी
0: जब
1: जी
0: you know when with Akash and the mother, and every time I look back it,
1: हाँ
0: and that's why I said in the script जब मैं लिख रहा था I was able to understand my mother so much more, and so it makes a person appreciate you know their
1: हाँ
0: parents much
1: जी
0: more like.
1: बहुत अच्छा लग रहा है अनूप कि आपके साथ ये बात की, आपकी फिल्म के ऊपर बात की है। शुभकामनाएं रहें।
0: धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच.
1: तो श्रोताओं, आप ये बातचीत सुन रहे थे मेरी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनूप लूकर, उनके साथ में। और ये फिल्म है डोंट टेल मदर, और ये सिडनी फिल्म फेस्टिवल में है। इसकी स्क्रीनिंग होगी 7 और 8 जून को। और ये भी आपको बताती चलूं कि वो साज जिसे आपने सुना वो था सरोद, और गाना आपने सुना?

0: The Bollywood Session on SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

वाली गल कर ले, प्यार मेरे नाल कर ले, काम सारे गल कर ले मेरे यार। तू मेरी बाह फड़ ले, आंखें ये आ पढ़ ले, सीने से दिल कढ़ ले मेरे यार। किन्ना सोना लगदा है तू।

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती हैं।